आपके पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं है। हाजादारो, मैंने बस आपकी जहमत को तमाम किया। एक शायर अहले बैत की तर्जुमानी करना चाहता हूँ कि उस रात शाम गरीबा की रात जनाब ज़ैनब ने उम्मे रबाब की मज़लूमी बयान की कि जहाँ जहाँ वो मज़लूमी की रात थी वहाँ मेरी भाभी जान को अपना बेटा असगर बहुत याद आता था। इस रात को क्या हुआ होगा, चश्मे तसव्वुर से शायर ने लिखा है कि सब लाशें पड़ी थी और हो ना हो जरमा जनाब रबाब या उम्मे रबाब ने ये कहा हो, सो रहे हैं सब मेरे वालियो दिलबर रेत पर, बानो बैठी ही रहेगी जिंदगी भर रेत पर।

होती चादर साया करती, हाय कितनी धूप है, सो रहा है आग के मैं दामे अकबर रेत पर। अरे माँ है, अरे झूला तेरा जल गया तो क्या हुआ है मेरे लाल, अरे झूला तेरा जल गया तो क्या हुआ है मेरे लाल, लोरिया दूंगी तुझे आ जा लिटा कर रेत पर। अरे बाप के सीने पे सर रख कर जिसे आती हो नींद, बाप के सीने पे सर रख कर जिसे आती हो नींद, कैसे सोए शाह की नन्ही सी दुख तर रेत पर। अरे शाम के रस ते में सर शबीर का जिस दम रुका, शाम के रस ते में सर शबीर का जिस दम रुका, गिर गई ना कैसे जब बानों की दुख तर रेत पर। सो रहे हैं सब मेरे लियो दिल भर रेत पर। मातम हुसैन।

सिर्फ ऐसा ना हो कि लिबास स्याह हो और सिर्फ मस्जिद और इमाम बारगाह में हुसैन हुसैन हो, बाहर निकले वही जिंदगी, वही लेन देन, वही गुफ्तगू, तो आप कैसे लोगों को कायल करेंगे कि आप किसकी मजलिस से आ रहे हैं? कैसे कायल करेंगे आपको कायल करना है ना, आपको कहना ना पड़े। इन चंद दिनों के बाद जो आपके अंदर तब्दीली आए, आपको कहना ना पड़े, बल्कि लोग आपसे रुक रुक के पूछें, भाई आजकल कहां जा रहे हो, आज तुम्हारा किरदार बदल गया है, तुम्हारे अफकार बदल गए हैं, तुम्हारे बिहेवियर में तब्दीली आ गई है, तुम इबादत गुजार होते जा रहे हो, तो क्या कहेंगे? हम उसकी मजलिस में जा रहे हैं जिसने नेजे पे भी कुरान की तिलावत की है। अब ये कैसे होगा जब आप अमली तौर पर इमाम हुसैन का साथ देंगे? ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, जरूरी भी हैं, मजलिस, मातम, आजादारी, सबील, न्याजे, ज्यारत, सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन किरदार सबसे मुहिम है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दो पैरेलल ताकतें, फोर्सेस, मूवमेंट चली आ रही हैं। कब से? जब से इंसान खल्क हुआ, जब से हजरत आदम को खल्क किया, दो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, एक उसके मुकाबले में है, एक अल्लाह के मकसद पे चल रही है। एक में गुरूर पाया जाता है, तकब्बुर पाया जाता है, हसद पाया जाता है, कीना पाया जाता है, दूसरे में तवाज़ो पाया जाता है, इनकिसारी पाई जाती है, खुलूस पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। ये खुलूस और इखलास तो था लोगों के अंदर जिसे आप अभी तक याद करते हैं। जो लोग करबला आए थे, अगर उनके अंदर इखलास ना होता, खुलूस ना होता, लिल्लाह ना आए होते, तो फिर क्या आप उसको याद करते? नहीं, खुदा भी यही कहता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वहां जो लोग आए थे उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की खातिर किया। जिक्र क्या है जाने मोहतरम, वक्त बहरहाल गुफ्तगू में नहीं चाहता कहीं और जाए, लेकिन जिक्र किसे कहते हैं? मैं अल्लाह का जिक्र करे, जिक्र क्या है? जिक्र की कितनी किस्में हैं? जिक्र एक जबान से है, लिसानी, जो आप और हम करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह, ये जबानी लिसानी जिक्र है। एक जिक्र कल्ब से है, कल्ब जिक्र करता है इंसान का, और हमारे कुलूब शायद हमें आवाज ना आए, मगर वो फिर भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं, वो तो धड़कते भी 72 दफा हैं। जो दिल है उसकी जो सही पैरामीटर है वो 72 है, कि जो उसकी एक डेफिनेशन है। आप चाहें ना चाहें आपका कल्ब फिर भी खुदा का जिक्र करता है, लेकिन इंसान जाकिर कैसे बनता है? जब उसके आजाओ जवारे जिक्र करना शुरू कर दे। खुद जिक्र क्या है? जिक्र किसको कहते हैं जाने मोहतरम? यानी आदमी जिक्र में रहे। जिक्र की डेफिनेशन ये है कि इंसान खुदा की तरफ तवज्जो को रखे, बस। अब जरूरी नहीं है, मतलब आपके हाथ में तस्वीर है, आप बोले जी माशाल्लाह, अब आजकल तो वो डिजिटल आ गई है, टक टक टक आप जिक्र करते हैं, तो अब इधर तस्वीर टक टक हो रही है, ध्यान कहीं और है, आंखें कहीं और हैं, ये जिक्र नहीं है। जिक्र एक दफा हो लेकिन जज्ब हो जाए, और वो जिक्र जब जज्ब होगा ना, तब इंसान के बदन बताएंगे कि ये जिक्र में है। उसका बदन बताता है, मतलब जवान जब बाजार में हो तब पता चलता है वो जिक्र में है या गफलत में है। क्योंकि जिक्र की जो अपोजिट चीज है वो क्या है? बहुत सारी चीजें अपने अपोजिट चीज से पहचानी जाती हैं। अच्छा, रात, रात कैसे पहचानी जाएगी? जब दिन नहीं होगा तो रात होगी, रोशनी नहीं होगी तो तारीकी होगी, सफेद स्याह। जिक्र के मुकाबले में जो चीज है वो गफलत है। जब कोई आदमी हालत जिक्र में होता है तो वो गुनाह नहीं करता। जिक्र क्या है? मतलब मैं नमाज पढ़ के खड़ा रहूं, नमाज तोड़ नहीं, तवज्जो कहाँ है तुम्हारी? खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम अस्तगफार

काटना पीटना है ना कुछ नहीं। और बहुत अच्छी बात है भाभी, आपके यहाँ जो लाइब्रेरी है कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, किताबों की सबील, किताबों की, भाई पानी तो माशाल्लाह सभी पी रहे हैं, पिला रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, मगर कोई किताब का प्यासा हो, इल्म का प्यासा हो, तो वो जाएगा ना वहां से किताब लेगा, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि किताब पढ़ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, किताब दोस्ती, किताब का होना। जाने मोहतरम, मैं कितना पढ़ लूंगा आपके आगे आके, ये उलमा कितना बोल लेंगे, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो हम भी टूटी फूटी बातें करते हैं, हम भी किताबों से पढ़ते, नहीं पढ़ते तो कुछ भी नहीं आएगा हमें भी। और वो किताबें जो हमारे यहाँ वाजिब हैं, पढ़नी भी चाहिए, कितनी किताबें, जवानों ने शहीद मुदहरी को कितना पढ़ा, शहीद मुदहरी की किताबें जवानों के लिए हैं, कितनों ने शहीद मुदहरी को पढ़ा अभी तक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब पढ़ लो, किसका नोवा कब आ रहा है, इतने मिलियन व्यूज, ये तो बहुत पैसे कमाते होंगे, मैं भाई कमाने तो यार क्या हो गया, तुम भी कमा लो, कितना बुक, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं इनको, आप तो बड़े तो बुजुर्ग हो गए, उनको तो नहीं कुछ कह सकते, जो बच्चे हैं, बच्चों को तोहफा किताब दिया करे ना, दे चीजें इसको तोहफे में, किताब दे, दो दफा दे, तीन दफा दे, खोल के शुरू पढ़ना शुरू कर देगा, अभी से बेटा किताबों की आदत डाल, हर महीने किताब खरीदो, हर हफ्ते किताब खरीदो, जितना पढ़ोगे उतना जहन तुम्हारा उतना खुलेगा। तारीख पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, हर चीज पढ़ो, पढ़ने से कोई नॉवेल पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, फिक्शन की किताबें पढ़े, आप दिमाग खुलता है फिक्शन पढ़ने से, फिक्शन पढ़ेंगे तो आप इमाम जमाना के लिए शहर डिजाइन करेंगे, कि इमाम जमाना आए तो कैसा शहर होना चाहिए, ट्रैफिक कैसा होना चाहिए, कौन करेगा ये, क्या इमाम जमाना अपने साथ लेकर आएंगे लोगों को, साथ ही लाना था तो मौला फिर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी आ जाए, हमने करना है, हमने हमने करना है। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सिस्टम कभी भी आपको ये नहीं करने देगा, कभी भी नहीं करने देगा, उसका काम ही यही है, गाफिल कर दो, डिट्रैक्ट कर दो, कैसा वो आया, उसने हर जगह कोशिश की है, जहां वो और देखे कितना उसका सिस्टम स्ट्रांग था, कि हजरत मूसा ही पे आज गुफ्तगू का इख्तिताम भी करें, हजरत मूसा ने कितनी मुश्किल, यानी जाहिर आसान थोड़ी था, लेकर बनी इसराइल को निकले, और जब दरियाए नील तक पहुंचे तो ये तो पैदल थे, पैदल ले गए, वो तो पीछे घोड़ों पे सवारों पर वो पहुंच गए, तो कौम ने क्या कहा मूसा से, हमारी जबान में, सादी लबान में, कि भाई फंस गए अब तो, हजरत मूसा का मौला तो हम पीछे आ गए, तो परवरदिगार ने क्या कहा मूसा से, हम मूसा इनसे कहो मेरा रब मेरे साथ है, खुदा जिसके साथ हो तो दरिया में भी रास्ते बना देता है, खुदा साथ हो, खुदा साथ हो तो कौमें बच जाती है, खुदा साथ, खुदा साथ ना हो, खुदा क्या कहता है, खुदा तो कहता है मैं तो हबलुल वरी, मैं तो तुम्हारी शेरक से भी ज्यादा करीब हूं, खुदा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे दूं, मैं तो खुदा कह रहा मैं तो तुम्हारे करीब हूं, तो कहां है खुदा का, इसका मतलब है खुदा तो मेरे करीब है, मैं खुदा से दूर हूं, और जब इंसान खुदा से दूर हो जाए तो फिर उसे कोई चीज फायदा नहीं देती, सही तो शहदा ने जो कुछ किया खुदा के लिए था, रजन बेकजा है, सब सब तू राजी, तू राजी, मजलिस खुदा के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ना आपके लिए, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुदा के लिए। अगर ये मजलिस खुदा के करीब नहीं कर सकती तो फिर माजरत दुनिया की कोई जगह खुदा के करीब नहीं कर सकती। जिस हुसैन ने अपने बदन के टुकड़े करा दिए खुदा के लिए, उसकी मजलिस में आकर अगर आदमी खुदा के करीब ना हो तो फिर दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई मकतब, कोई मजल, कोई जिक्र खुदा के करीब नहीं कर सकता। रहमत वासे इमाम हुसैन, खुदा की रहमत ऊपर से उतर रही है, डाउनलोड हो रही है।

0: ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, दर्द तो नहीं हो रहा, प्यास तो नहीं लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने मन्नत मांगी है, जैसे ही आंख खोलोगी एक बकरा कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है?
1: सब खैरियत से तो हैं?
0: सब बच गए सिवाय एक के, जो अपनी लालच की वजह से मारा गया।
2: अल्लाह हू अकबर,
3: अल्लाह हू अकबर,
2: अल्लाह हू अकबर।

0: अल्लाहु अकबर।
1: कैसे हो बेटा, दर्द तो नहीं है ना?
2: जी नहीं।
0: अल्लाहु अकबर,
3: अल्लाहु अकबर,
4: अल्लाहु अकबर।
0: अल्लाहु अकबर,
3: अल्लाहु अकबर,
4: अल्लाहु अकबर।
1: खुदा रहमत करे।
0: हम सब लालच के गुलाम हैं, कोई बच्चों का, कोई सिक्कों का और कोई

0: खूबसूरत बीवी का अगर संदूक से दिल ना लगाया होता तो ये इंसान अब भी जिंदा होता। इसकी लालच इसे खा गई।
1: बेहतर है इसे बख्श दो। शुक्र करो कि बेटे का दाग नहीं देखना पड़ा।
0: अब हम हैं और ये बेसालार कारवा। हम सब में रास्ता आप ही जानते हैं। आपके साथ मुहाफिज भी हैं। अभी आप सब जितने दिन आराम फरमाना चाहते हैं फरमाइए, फिर हम साथ चलेंगे।
2: जैसे ही मेरी बीवी की तबीयत बेहतर हो जाए चल पड़ेंगे
3: इंशाल्लाह।
2: इस तरह चलेंगे कि हज के मौसम में मक्का पहुंचे
3: इंशाल्लाह।
2: इंशाल्लाह जनाजा जमीन पर ना रहे।
4: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
2: كفوا أحد.

0: बखैर।
1: सुबह बखैर, आ सकते हैं?
2: बेशक, आइए। मैं अभी आता हूं।
1: आप आराम कीजिए।
0: खुश आमदी। अब कैसी हैं आप?
3: बेहतर हूं,
1: शुक्र है अल्लाह का।
2: ऊंट के सामान को अच्छी तरह देख लो, ये लो। ऊपर की तरफ जोर से खींचो, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये लो, निशाने की तरफ देखो, तीर को कमान के बीच में रखो, छोड़ दो। शाबाश, देखो कोई मुश्किल नहीं है।
4: हालांकि आयला, आपने देखा, सीधे उठ के सामान पर लगा। अगर अभी दुश्मन होता तो इसका काम तमाम कर देता।

0: शाबाश।
1: सफरनामा खत्म नहीं हुआ?
0: नहीं, मुझे डर है कहीं परेशान ना हो। आखिर माँ है, मेरे इंतजार में है।
1: उनका हक बनता है। लिखो। अब बारी है असली चीज की। तुमने कम तकलीफें नहीं उठाई हैं, खूब बर्दाश्त किया है। ये रहा तुम्हारा इनाम, असली कमान। अब जो कुछ सीखा है उसे खुद याद करो। पूरा ध्यान एक तरफ, सांस रोको। हाँ, तवज्जो, फिर तीर को छोड़ो।
2: नहीं होगा, मेरे बस में नहीं है।
1: ना उम्मीद ना हो, हर काम में थोड़ा हिस्सा तुम्हारा है और आधे से ज्यादा खुदा का। उस पर भरोसा करो और उससे मदद।
2: क्या मतलब?
1: कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी तीर तुम कमान से छोड़ते हो उसमें पहले अल्लाह का इरादा है और बाद में तुम्हारे बाजू की ताकत। अगर ऐसा ना किया तो हर काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और नामुमकिन भी। क्या मदीने के पहलवान को जानते हो?
2: कौन है?
1: इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ। मदीने में एक पहलवान था जो शुजात और इंसाफ में बेमिसाल था। इत्तेफाक से एक जंग के दौरान उनके जिस्म में बहुत दर्द उठता है,
2: जिस तरह मुझे बुखार था।
1: तुम्हारे जैसे, बल्कि उससे भी ज्यादा।
2: क्या वो पहलवान नहीं थे?
1: थे, लेकिन पहलवान का जिस्म और जान भी हम जैसा ही होता है। वो बीमार होता है, उसे दर्द और बुखार होता है। वो आशिक होता है। सभी चीजों में तुम्हारे और मुझ जैसा सिवाय एक चीज में।
2: किस चीज के?
1: ईमान के। ईमान में जमीन और आसमान कभी भी उस जैसा ना देख पाएगा।
2: जंग का बताओ।
1: अच्छा, जंग। हाँ, जब दुश्मन किले में छुप गया और जब जंग लंबी होती नजर आई, पहलवान समझ गया कि इस तरह से बहुत से सिपाही मारे जाएंगे।
2: दुश्मन के किले के साथ क्या किया?
1: एक मर्तबा नारा लगाता है और किले का दरवाजा जमीन से उखाड़ देता है।
2: दरवाजा कितना बड़ा था?
1: बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि 40 जंगजू मर्द भी उसे उठा नहीं सकते थे।
2: आपने तो कहा कि पहलवान हम जैसा था।
1: असल नुक्ता यहीं पर है। तुमने पहलवान का हाथ देखा, लेकिन पहलवान ने ये काम अल्लाह के हाथ से किया। याद रखो कि हर बड़े काम से पहले हमेशा अल्लाह ताला को याद करोगे। इस तरह हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है।
2: आपने पहलवान का नाम नहीं बताया।
1: पहलवान?
3: ये खैर का पहलवान जिसका नाम बार बार लेते हो, झूठ भी बोलता था क्या जनाबे वाला? अली ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरे दिल का खून कर देना।
1: ये लो, अपने बाबा के पास जाओ।
4: काफी है, आराम करो।
3: क्या तुम खुद नहीं कहते हो कि अली रसूल के कलाम को अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे? क्या झूठ बोलना गुनाह कबीरा नहीं है? हनीफ के बेटे फिर क्यों तुम्हारी जबान झूठ बोलती है?
5: बानो सुनिए, सब आप दोनों को देख रहे हैं।
3: मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अगर तुम्हारा ये बर्ताव और अखलाक उसके मकतब का नतीजा है तो अल्लाह का हजार शुक्र है कि मैं अलवी नहीं
5: हूं। अस्तग़फिरुल्लाह, शैतान बीच में आ गया है, इसलिए इस तरह शोर शराबा कर रही हो।
6: आप दुल्हा दुल्हन है और हज के लिए जा रही है, जरा देखो तो किस तरह कांप रही है।
1: आप तशरीफ ले जाए, कोई सामान न रह जाए, कल निकलेंगे।
7: चलिए
6: चलिए यहाँ से।
5: चलिए चलिए, चलते हैं।
6: चलिए,
3: मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, कल लौट जाऊंगी। हिलाल,
1: कमरे में बात करेंगे।

0: मैंने क्या किया है जो इस तरह सबके सामने झगड़ा कर रही थी? कोई बात कहनी है तो अकेले में कहो, मैंने कौन सा झूठ बोला है?
1: इश्क और मोहब्बत का ढोंग इसलिए किया ताकि वो खत सलामती के साथ पहुंचाओ। सही कह रही हूँ ना मैं? कितनी बेवकूफ हूँ मैं, कितनी पागल हूँ मैं। मैं समझ रही थी कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारे हाथों की गुड़िया हूँ हिलाल। पाक सफेद एहराम के नीचे कत्ल का सामान हज पर ले जा रहे हो। तुमने वो देखा कि खत वालों का क्या अंजाम होता है?
0: इतनी बेचैन मत हो, अभी तो तबीयत संभली है। जो कुछ कह रही हो वो तुम्हारा हक है। हम हज पे जा रहे थे और माँ अपनी शर्त कबूल किए बगैर हमें इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हें खत मिल गया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बताता हूं तुम इसी तरह बेचैन होती हो। कूफे के हालात तुमने खुद देखे, सिर्फ यही सफर तुम्हारी जान बचा सकता है।
1: हिफाजत और इस तरह? अगर जिंदान के दरवाजे पे शोर शराबा न होता तो तुम्हारा सब कुछ फाश हो जाता और खत उनके हाथ लग जाता। इतना भी ना सोचा कि कैसी मुसीबत हमारे इंतजार में है।
0: फिलहाल तो किसी परेशानी के बगैर दरवाजे से गुजर गए, अब किस चीज का गम है?
1: इस बात का गम है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे साथ रहने के शौक में हज का फैसला किया है और तुम भी बाकी मर्दों जैसे खुदगर्ज, बेख्याल और बेगैरत हो।
0: बहुत बेइंसाफ हो, बहुत। कोई जानता हो या ना जानता हो, पर अल्लाह जानता है तुमसे मेरा इश्क सच्चा है। मैंने बताया था कि मैं मजबूर था। तुम जानती हो कि तुम्हें चाहता हूं, इसीलिए ऐसा कह रही हो।
1: बस करो हिलाल, पुरानी बातें ना दोहरा।
0: तुम दोनों ने मुझे सिल बट्टा में रखा है। हावन का पत्थर मां और हावन का दस्ता तुम, जो हर रोज मेरे सर पर मारती हो। याद रखो, जो खेल तुम दोनों ने शुरू किया है उसमें हारने वाला मैं हूं। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, एक पुरसुकून सफर से भी मैं महरूम हूं। तुम्हें चाहने की हर रोज एक नई कीमत चुका रहा हूं। कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, मेरे इश्क पर शक ना करो। जाने के लिए तैयार है?
2: अल्लाह आपकी हिफाजत करे।
0: अपना सामान उठा लिया है?
3: जी, आपका जो
0: है। अहमद, किसी का सामान ना रह जाए, अगर मदद चाहिए तो उनकी मदद करो।
4: जी जरूर।
0: आइए, मैं मदद करता हूँ। चलने के लिए तैयार हो जाओ।

0: ध्यान से सुनो, जैसा तुम देख रहे हो इस कपड़े में कोई बटन वगैरह नहीं है। अगर शरारत करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी।
1: हे अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। खाला हंसिए नहीं बल्कि दुआ कीजिए।
2: खुदाया हमारे हाजी की इज्जत रखना।
0: अपने बाबा के पास जाओ। माशाअल्लाह, खुदा कितना खुश होगा तुम जैसी मेहमान के लिए। मुझे माफ किया।
2: जब तुमने कहा मेरी मोहब्बत पर शक न करो और मेरे साथ रहो, अगर तुमने ये झूठ भी बोला है तो बहुत अच्छा झूठ था। वहीं तुम्हें माफ कर दिया।
0: खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अपने कपड़े ठीक कर लो।

0: क्या किसी को ढूंढ रहे हो?
1: सुनो भाई, रसूले खुदा के नवासे कहाँ?
2: वो तो चले गए।
1: चले गए? कहाँ?
2: उनके मकसद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 8 ज़िलहिज्जा का सूरज निकलने से पहले पूरे कारवां के साथ निकल गए।
1: तेजी के साथ जाऊं तो उन तक पहुंच जाऊं।
2: आप तो मोहरिम हो गए हैं, कहाँ? आमाल खत्म होने तक आप कहीं नहीं जा सकते। दुआ की गुजारिश।
0: अब क्या करोगे?
1: अगर इमाम मिल गए तो ठीक, वरना मदीने जाएंगे उम्मुल मोमिनीन से मिलने के लिए।
0: उम्मुल मोमिनीन?
1: जनाबे उम्मे सलमा खत उन्हें देंगे, फिर वो जो ठीक समझेंगे, इस तरह हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा।

0: अमीर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तुम्हें गिरफ्तार करके कूफा ले जाना है।
1: अगर तुम्हारा मकसद मैं हूं तो बताओ किसकी तरफ से आए हो? हिलाल, हिलाल।
2: शर्मसार हूं जनाब, शर्मसार हूं।
3: अगर तुम्हें मुझसे काम है तो इन्हें छोड़ दो।
1: इसे हाथ ना लगाना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो।
3: इसे इल्तिजा ना करो।
1: इसने क्या किया है?
3: मेरी अमानत पहुंचा देना।
1: क्या किया है इसने? मुझे भी इसके साथ ले जाओ, मैं भी इसकी साथी हूँ, मुझे ले जाओ। हाथ खोलो मेरे, मैंने कहा हाथ खोलो। कारवा वालों से कहना कूफा की तरफ चल पड़ो, मेरे वालिद तक हिलाल की गिरफ्तारी की खबर पहुँचाओ। कहना नायला में बिच्छू की डसरी की वजह से जल आने की ताकत ना थी, यहाँ तक के गनी साथ लेने की हिम्मत भी ना थी। जल्दी

0: मेरे लौटने तक यहीं रहो, भूखे ना रहना। सलाम।
1: सलाम।
0: तुम्हें मालूम है कि उम्मे सलमा का घर कहाँ है?
1: मेरे साथ आइए।

0: यही है उम्मे सलमा का घर।
1: शुक्रिया
0: जी।
2: या अल्लाह या अल्लाह, सलामुन अलैकुम हिलाल की आंखों के नूर, हज कबूल हो बेटी।
1: सलाम, माफ कीजिएगा, सफर की थकावट और भूख की वजह से आपको सुबह देख ना पाई।
2: कोई बात नहीं बेटी, अच्छे दर पे आई हो। जैसे ही निवाला उनके हाथ से लोगी, तबीयत संभल जाएगी। अरीफा और मोमिना है, हर दर्द का चेहरा

0: उनकी मुट्ठी में है।
1: खलल का बाइस तो नहीं हो?
0: आज तक इस घर का दरवाजा किसी पर बंद नहीं हुआ है। तशरीफ ले जाए। सुनो मेरी बेटी, परेशान न होना। जब तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो खुद अपनी आंखों से देखोगी कि किस तरह अल्लाह अपने खुदाई अख्तियारात से हर चीज पर नजर रखता है। तुम सिर्फ अपना और हिलाल की अमानत का ख्याल रखो और किसी की फिक्र ना करो। फी अमानिल्लाह।

0: बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे पर चमक लौट आई है। जब सूप का प्याला खत्म करोगी तो नूरुन अला नूर हो जाएगा।
1: अगर हिलाल से वादा ना किया होता तो आपकी जहमत का बाइस ना बनती।
0: मेरी बेटी कौन सी जहमत। काश आसमान से कोई फरिश्ता आता और वो बताता कि मैंने कौन सी नेकी की है कि आज मेरी तकदीर ये थी कि तुम जैसी परी सूरत से मुलाकात करूं। बहुत खुश नसीब है ये उम्मे सलमा।
2: खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि अगर कोई काम है तो मैं बजा लाऊं।
0: नहीं नहीं, कैसा काम। मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा भूखा सो गया है। सूप तो हर किसी के लिए बना है, खुद खाओ बच्चे को भी खिलाओ, उसके बाद चली जाना, समझ गई।
2: जी अच्छा,
0: खुदा हाफिज़।

0: मेरे हिलाल को गिरफ्तार करके कूफा ले गए हैं। उस पर यह खत पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मैं उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। करार यह था कि यह खत हुसैन इब्ने अली के हाथ में पहुंचे, जो ना हो सका।
1: अल्लाह कबूल करे। तुम समझो कि उनके हाथ पहुंच चुका है।
0: इमाम के शियों के लिए मुबारक हो। मेरा नाम तो इस खत में नहीं, इतना भी नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या कर रही हूँ।
1: तुमने अपनी जान खतरे में डाली और किसी भी वजह से सख्ती बर्दाश्त की तुमने। जिस हुसैन को मैं जानती हूँ, किसी भी शख्स का एहसान बाकी नहीं रखते वो।
0: मैंने आपको परेशान कर दिया क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी?
1: नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। नबी का लखते जिगर बयाबानों में और मैं घर में अमन व अमान में।
0: परेशान ना हो, कूफियों के मेहमान हैं और वहां भी उनके सीना से पर कम नहीं है।
1: इस सफर का कोई मकसद और मंजिल नहीं, इसकी मंजिल कयामत खेज है। सुना है कि इमामत की रिदा अमानत छोड़ कर गए हैं।
0: अच्छा, इसका क्या मतलब?
1: यानी उनकी माँ फातिमा मर्जिया अज़ा का लिबास पहनकर हौज़े कौसर पर उनके इंतजार में

अगरचे तुम्हारी आंखों में नाराजगी दिखी, लेकिन इन हाथों पर फिदा जो मेरे बेटे हुसैन का खत मेरे लिए लाए हैं। बेटी तुम खुश नसीब हो, खुशबख्त हो, तुम्हें तुम्हारा दिल यहां लाया। यानी कि इससे पहले तुमने अपने जमीर को गुनाह से आलूदा नहीं किया है, इसके बाद भी अपने दिल की आवाज सुनना। उस हां की तरह जो तुम्हारे दिल से निकली और हिलाल के

0: एक हफ्ते से हम यहाँ शहर के दरवाजे के पास इंतजार में हैं।
1: चीटियों टिड्डियों ने सारा सामान बर्बाद कर दिया है।
0: जो कुछ बचा है उसे सूरज ने जला दिया है।
2: पहले ही दिन से बता दिया गया था, आप लोग आने की इजाजत रखते हैं, बाहर जाने की नहीं। अगर जा सकते हो तो बिस्मिल्लाह।
0: कहाँ जाऊँ मोमिन, मेरे बीवी बच्चे यहाँ नहीं है, कहाँ रहूँ और कब तक? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।
3: अगर वापस ना जाऊँ तो मेरे जानवर मर जाएंगे, और अगर यहीं रहूं तो वापसी का रास्ता नहीं है। मरजाना के बेटे, खुदा तुम्हारा बुरा करे, नहीं मालूम सुलह के लिए आए हो या जंग के लिए।
2: ए कमीने, क्या कहा? बे एहतरामी करते हो? हमेशा मेरे अमीर का नाम अदब और एहतराम से जुबान पर लाओ, अपनी औकात में रहो। तुमने गुस्ताखी की है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पकड़ो उसे।
3: क्या कहा मैंने? मैंने कोई तौहीन नहीं की है।
2: इसे ले जाओ और अमीर की तौहीन करने के जुर्म में सजा दो, और इसके जानवर ज़बह करके पूरे कूफा में तकसीम करो, ताकि ये दूसरों के लिए बाइसे इबरत बने।
3: ए लोगो, मेरी मदद करो, मैंने कुछ नहीं किया है।
4: किनारे हटिए,
3: कोई तो मेरी मदद करो।
4: किनारे हटिए।
5: इतनी अफरातफरी किस लिए? कौन आ रहा है जो कयामत?
4: सच क्या है और झूठ क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी हुकूमत का अंदाज नौमान की तरह नहीं है, बहुत सख्ती के साथ हर चीज पर कड़ी नजर रखे है।
6: रो नहीं, सर ना पीटो, अब जबकि मीसम की बातें सच साबित हुई हैं, लिखो जो कुछ मैं कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले रहे हो। तुम कहाँ थे रोज़े गदीर जब साहेब उम्मत ने तुम्हारे दीन को कामिल किया, जिस वक्त अली का हाथ ऊपर उठाया और फरमाया मेरे बाद अली तुम्हारा मौला है, और फिर फरमाया जो कोई अली को दोस्त रखे अल्लाह का दोस्त है, और जो कोई अली से दुश्मनी करे अल्लाह का दुश्मन है। गदीर को तुमने भुला दिया है और रसूल के कलाम को पामाल कर दिया। मेरी बातों को तुम कभी भूलना मत, कभी न भूलना। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले ही रहे हो, लेकिन अब खुदा के वास्ते ये गलती कभी न करना। मस्जिदे कूफा का मस्जिदे कूफा का मेहराब अली के खून से खिजाब हो गया, अली से खिजाब हो गया। और जहरा का घर लुट गया।
2: अमीर अब्दुल्ला बिन जियाद के हुक्म पर इस झूठे की जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा, इसके हाथ पांव काटूंगा, और इस कतर इस दरख्त पर लटका रहेगा कि इसका जिस्म परिंदों की खुराक बन जाए।
7: अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तुम्हारे अहमक दुश्मन तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे।
6: मेरी जबान काटो।

0: कोई बच्चा पैदाइश के वक्त बदबख्त नहीं होता, हम खुद ही अपनी किस्मत और इकबाल को लात मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस रोज से तुमने मेरी बहन से शादी की है, बदबख्ती की मोहर तुम्हारी पेशानी पर लग गई है। तुमने लालच की, लालच।
1: भले 100 दिन तक मेरे कान में तुम यही कहते रहो, मेरी बात वही है जो मैं कह चुका हूं। कोई खत नहीं था मेरे पास।
0: अच्छा, बहुत चालाक हो। अंबियों से लड़की लेकर उनके माल और दौलत से अपनी हैसियत बनाई, फिर हुसैन बिन अली के लिए खत लिखा, आइए और हुकूमत कीजिए, गदा समझाए।
1: पहले बासे तो रब में तुम्हें बहाने की तलाश है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सही कहा ना?
0: सबूत? क्या हमें मालूम नहीं कि तुम हुसैन बिन अली के लिए खत लेकर जा रहे थे? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे दिन रात औहद की बेटी के साथ अमान व अमान में खुश रहे हैं।
1: इंसान की तरह बात करो तो समझ आए।
0: तुम सच में गधे हो, तुम सच में गधे हो।
1: अपनी बिरादरी साबित करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर चुका हूं तुम्हारे कहने पर।
0: अभी एक काम बाकी है, तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए इब्ने ज़ियाद को मनाने में मेरी खाल उधड़ गई, लेकिन अमीर ने एक छोटी सी शर्त रखी है, तुम्हें लश्कर हुसैन के खिलाफ फौज का कमांडर बनना है, समझे?
1: नामुमकिन है।
0: मत डरो, हुसैन के पास 300 साथी भी नहीं है, उसकी शिकस्त यकीनी है।
1: तुझ पर तेरे बाप और इब्ने ज़ियाद के बाप तीनों पर लानत है, जाके कह देना हिलाल ने कहा है मैं अपने इमाम से मुकाबला नहीं करूंगा, मेरा सर काट दो, बात खत्म।
0: कान खोल कर सुनो, हुकूमत के कायम के लिए हम अपनी खवातीन का गला भी काट सकते हैं। हुसैन इब्ने अली क्या चीज है?
1: बेगैरत,

0: अजब आ गए।
1: जहन्नुम में खुश आमदीद अबू नईम।
2: हाँ सब पहुँच गए, जल्दी करो जल्दी करो।
3: नई खबर क्या लाई हो अकीला?
2: मेरा हिलाल कहाँ है?
3: जिंदा नहीं इब्ने ज़ियाद।
2: अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ।
3: इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो।
4: निसम के जनाजे को चुराने वाले का नाम बताऊंगा।
3: सामिया को मेरे हवाले कर दो,

0: दूसरे वालों की बातों को सुनो लेकिन यकीन हरगिज मत करना।
1: उसकी कब्र कहाँ तलाश कर रहे हो? उसकी कब्र यही है।
2: नईम, इस आदमी ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया है।

याद आएंगी ये मजलिस याद आएंगा ये मातम आका सलाम ले लो मौला लो चल के हुए हैं आंसू अपना

शबीर है दिलगीर है सैयद सज्जाद आ क्यों कर चले नंगे पा हाथों में हथकरिया है।

ले ज़ियारत सबकी तमन्ना आए वहाँ हम इसके सिवा कोई आरज़ू नहीं लाशे पे ज़ैनब।

एजर इसी को कहा गया है कि व्हाट यू ईट एंड हाउ यू फुलफिल योर डिजायर्स एंड हाउ कैन यू ग्लैमराइज इट। सो मैं कुछ खाने से पहले फोटो निकाल के सबको बताता हूं मैंने क्या खाया है। बिकॉज मेरी वैल्यू मैंने इसमें समझा है कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, किस गाड़ी में चल रहा हूं इज इक्वल टू माई वैल्यू। आई एम नॉट द वैल्यू, माई पोजेशंस आर माई वैल्यू। यानी माई पोजेशंस आर सुपीरियर देन मी। अहले बैत कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही ये है तो क्या है तुम्हारी जिंदगी। रहबर मुअज्जम एक किताब में फरमाते हैं कि अगर इंसान सब उसकी जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाएं, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छे से अपनी जिंसी ख्वाहिशात पूरी करे, तो कहते हैं जो गांव बैठा हुआ है इस गांव में और इस इंसान में क्या फर्क है, क्या फर्क है। बस मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूक हूं, और अशरफुल मखलूक हूं इसलिए अल्लाह ने अहले बैत के जरिए से मुझे राह बताई है, मकसद बताई है। कहा जिंदगी में खाओ पियो, कूलू अशरबू। आयतुल्ला कराती, अगर कराती कहते हैं कि एक आयत है कुरान में जिस पे हर मुसलमान अमल करता है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि उस आयत पे अमल नहीं करता। कूलू वशरबू, खाओ पियो। अल्लाह ने कुरान में बोला खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। दूसरा वाला पार्ट छोड़ देता लेकिन पहले वाले पार्ट पे पूरा अमल करता। बस अजीजाने गिरामी, तो हमारी गुफ्तगू जब तक मेरी नफ्स को झिंझोड़ा ना जाए और एहसास ना दिलाया जाए कि इसी मालो दौलत ओ सर्वत ओ मकाम की वजह से लोगों ने हुसैन को छोड़ दिया था। किसी को अगर लग रहा है नमाज की वजह से वो जन्नत चला जाएगा तो गलत लग रहा है उसको। किसी को लग रहा है कुरान पढ़ने की वजह से अगर वो जन्नत चला जाएगा गलत लग रहा है उसको। शिमर ने 40 हज किए थे, 40 पैदल हज करता था शिमर। दो जंगों में मौला अली के साथ लड़ा है दुश्मन के मुखालिफत में। एक जंग में इतना जख्मी हुआ था कि मरने वाला था, शहीद होने वाला था, लेकिन जिंदगी का मकसद वही दुनिया, वही माल, वही दौलत, वही इंसान को शिमर बनते वक्त नहीं लगता। अजीजाने गिरामी, हिंदुस्तान में एक आदमी है, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो पहले शिया था, फिर उसने वक्फ की प्रॉपर्टीज खाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज खाता रहा। फाइनली उसके लिए वो शहर रहे बन गई। फिर क्या हुआ, फिर वही आदमी इस्लाम को तर्क करता है, कुरान को तर्क करता है, मजहब को तर्क करता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, खुसूसन जवानों, जब ये जवान आदमी था कुरान की मुखालिफत करता है, बदकलामी करता है इस्लाम के बारे में, शिया है, सैयद है, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में अगर इसके कांधे को कोई पकड़ के कहता कि तू 55 साल में ऐसा हो जाएगा तो लड़ लेता तुमसे। पहले दिन इंसान वह नहीं पहुंचता, खुतुआती शैतान आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। पहले दिन शैतान कहेगा लड़की है बात कर ले यार, क्या होता है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, एक वीडियो देख ले क्या होता है। स्लोली स्लोली इंसान वहां पहुंच जाता है कि कुरान में शैतान कहता है कि रोजे कयामत पूछा जाएगा ये शख्स

शैतान से कहेगा तूने मुझे फंसा दिया। शैतान पलट के कहेगा आई ओनली गेव यू इन्विटेशन, यू डिसाइडेड। हाथ ऊपर कर लेगा शैतान। बस अजीजाने गिरामी, पहली चीज मुझे हुसैनी बनना है इरादे से शुरू होता। इरादा नहीं है तो नहीं बन सकता, लेकिन सख्त है इरादा करना, क्योंकि सख्तियां झेलनी होंगी, मुश्किलें झेलनी होंगी, कुर्बानियां देना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। रास्ता सख्त है अली का, हल्का रास्ता नहीं है। इंसानों में सबसे अफजल अली और अली के चाहने वाले हैं। आसानी से नहीं मिलेगा, सख्तियों से मिलेगा, मुश्किलों से मिलेगा। बस अजीजाने गिरामी, ये पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, खुसूसन जो जवान वॉलंटियर्स हैं, मैं देख रहा हूं जब से मैं आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो बुजुर्गान यहां पर हैं मैंने उनको भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें एक सोसाइटी में ये दोनों टायर्स हैं जो सोसाइटी को चलाते हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। बुजुर्गान का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जवानों की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों मिलके कौम जो है वो आगे बढ़ती है। मैं जवानों को कहूंगा, जवानों अगर एनर्जी बहुत है तो आपको अहले बैत ने हुक्म दिया है कि बुजुर्गान का एहतराम करो, रिस्पेक्ट करो उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए वो वैल्यू सिस्टम का होना। बुजुर्गान की जिम्मेदारी है कि जवानों की एनर्जी को चैनलाइज करें, उन्हें बोले नहीं ये करो ये करो, उनसे पूछो कि आपकी आइडियाज क्या हैं, ताकि वो जवानों की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। अजीजाने गिरामी, मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू जवानों के सिलसिले में करना चाहता हूं। अब गौर करिए, मैं आपसे कहता हूं इब्राहिम, मूसा, ईसा, अली, फातिमा, आपने सुना, आपके जहन में कोई जवान आया या बूढ़ा? कुरान ने जो रोल मॉडल्स दिए हैं, ये नबी सारे जवान थे, और इन्होंने जो पीक काम किया है, जो कुरान में मेंशन्ड है, वो उनकी जवानी के आलम में है, रिटायरमेंट के आलम में नहीं है। अब रिटायर हो क्या करेंगे, मस्जिद ही जाएंगे। ये लोगों ने जवानी के आलम में, हजरत इब्राहिम के सिलसिले में खुदा ने कुरान में कहा है कि जब उन्होंने भूतों को तोड़ा, देखिए जवानों के अंदर एनर्जी होती है जालिम से मुकाबला करने वाली, इसलिए रसूलल्लाह ने जैसे ही दीन लेके आए, सबसे पहला ग्रुप जिसने रसूलल्लाह को सपोर्ट किया वो जवान थे। और मक्का वाले अपने जवानों को कहते थे कि देखो उनके पास मत जाना क्योंकि वो गुमराह कर देंगे। जानते थे जवान का दिल नर्म है, जब हक सुनेगा तो कबूल कर लेगा। सबसे पहला ग्रुप जो अटैच होता है वो जवान है, कि जवान में जोश होता है, एनर्जी होती है, इतनी अटैचमेंट्स भी नहीं होती है, इतनी प्रॉपर्टी बना लिया क्या होगा, कार का क्या होगा, इसका क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों, जिंदगी जवान जो है वो एनर्जी के साथ जीता है। कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना समझ में आए कमिटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कुरान में जब इब्राहिम का जिक्र किया हुआ तो दुश्मन कह रहे थे, जब इब्राहिम ने जाके बुतों को तोड़ दिया तो कहा कालू समय न फता, हमने सुना एक जवान आया है जिसका नाम इब्राहिम है। बस इब्राहिम कौन है? अल्लाह के हबीब। लेकिन कब हबीब बने? जब जवानी का आलम है।
तो आप यहां पर एक

जवान बैठे हैं, अगर आपकी उम्र बिटवीन 18 एंड 25 है तो आप जैन जी नहीं हैं, आप इब्राहिमी हैं। अब सुने, हजरत इब्राहिम ने मुकाबला किया जालिमों का, डरे नहीं, लेकिन साथ में कुरान में है तदबीर इस्तेमाल की, रैशनैलिटी और प्रूफ। मैंने पहले पढ़ चुका हूं कि नबी हमेशा रैशनैलिटी के साथ बात करते हैं। छोटे बुतों को मार के कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में दे दी, कहा ये बड़े ने मारा है, कहा ये तो मार नहीं सकता, तो जो मार नहीं सकता बचा नहीं सकता वो खुदा हो कैसे सकता है। तो इब्राहिम ने अपनी जवानी के आलम में जमाने के ताहूत और जमाने के जालिम को और उनके पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। खुलासे में बयान कर रहा हूं ताकि बात एग्जांपल्स के साथ आप तक पहुंच जाए। अगले प्रॉफिट है हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ को बचपन में डाला गया कुएं में, लेकिन जब निकले और वो मिस्र के गवर्नर बने या मिस्र के उनकी गवर्नमेंट इनके हाथ में आई तो कंप्लीट जवानी का आलम था। तो जब आप यूसुफ सोचो तो ये नहीं सोचो कि बूढ़ा, ये सोचो जवान। आपके लिए रोल मॉडलिंग करेक्ट होनी चाहिए। यूसुफ जवानी के आलम में, गौर करें जवान, रिवायत है हमारे वहां कि कुछ जवानों को जब रोजे कयामत सजा दी जाएगी तो वो कहेंगे कि मैं इतनी खूबसूरत थी मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, या मैं इतना हैंडसम था मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो रिवायत है कि उन्हें मरियम और यूसुफ दिखाए जाएंगे कि देखो इतने हसीन तो न थे, ये मरियम होने के बाद अपनी नफ्स पे कंट्रोल कर सकती है, ये यूसुफ होने के बाद कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। यूसुफ का जवानी का आलम है और जुलेखा ऑफर करती है खुद को, आई एम अवेलेबल, देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा हियर। सात दरवाजे हैं क्लोज्ड, चादर लेके बुत के आंखों पे डाल दी, कहा आंखों पे क्यों डाला, कहा मुझे शर्म आती है अपने खुदा के सामने ये काम करते हुए। यूसुफ ने कहा इन्नल्लाह यरा, मेरा अल्लाह वो है जो हर चीज देखता है, उसके आंखों पे कोई पर्दा। अगर इनकॉग्निशिया ऑन कर लेंगे तो हो सकता है मोबाइल रीड ना करे लेकिन खुदा सब देख रहा है। अरबाब अज़म, खुदा ने हजरत यूसुफ का पूरा वाकया कुरान में इतनी तफसील से इसलिए लिखा ताकि खुदा ने इंसान को बनाया है और इंसान के डिजायर्स को जानता है और शैतान के ट्रैप को भी जानता है, इसलिए आपको हर फेजेस ऑफ लाइफ में अहसन अल कसस दिया, बेस्ट स्टोरीज दिया, बेस्ट रोल मॉडल्स दिया ताकि तुम उन्हें फॉलो कर सको। और कब दिया, जवानी के आलम में। अगर बूढ़े होते तो कोई बात ही नहीं थी, मौलाना बूढ़े थे, जवानी का आलम था। वही जवानी में अजीजाने गिरामी, यूसुफ की जिंदगी से एक दर्स अगर लेना है तो यह भी दर्स है कि यूसुफ ने अपनी पूरी आर्मी को जेल में बनाई, यानी खुदा ने जो इम्तिहान रखा था उसी इम्तिहान को वो जो है यूसुफ ने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दी। यूसुफ ने थ्रेट को

अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दी। बस शागिर्द को बनाना, ये इस्लाम में सिस्टम ऑफ तरबियत है। तरबियत हो नहीं सकती कोई खाली बोल के चला जाए, जब तक कोई अमल करके ना दिखाए तब तक तरबियत नहीं होती। इस्लाम में कॉन्सेप्ट तरबियत का मुरब्बी के बेस के ऊपर है। अरबाब अज़ा, बस गौर करिएगा, यूसुफ जवानी का आलम है, अब जब जुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए, सवाल यह है कि यूसुफ उन बंद दरवाजों की तरफ भागे, यूसुफ ये दरवाजे बंद हैं कहां भाग रहे हो, बड़े बड़े दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। यूसुफ जवाब देंगे, भागना काम मेरा है, बंद दरवाजों को खोलना खुदा का काम। इतना तवक्कुल होना चाहिए। बस अजीजाने गिरामी, जो बड़े बड़े उरफा हैं, मिलता है उनकी तारीख में कि एक आरिफ थे, गालिबन रजब अली खयात थे, जब वो टेलर थे तो एक लड़की को उनसे इश्क हो गया। उस लड़की ने बहाने से अपने घर पे बुलाया, बहुत पैसे वाली थी। जब घर पे गए तो पता चला कि वो लड़की की नीयत अच्छी नहीं है। इन्होंने कहा, मुझे इजाजत देंगे आपका किस चीज की, मुझे वॉशरूम जाना है। उस जमाने में फ्लश तो नहीं होता था, तो ये वॉशरूम गए और इन्होंने वहां का जो तकरीब खराब चीजें थी वो पूरे अपने बदन पे लगा लिया। बाहर आए तो वही लड़की चिढ़ के कह रही है, जाओ जाओ जाओ। इस तरीके से उन्होंने अपने नफ्स को बचाया। जब ये वाकया हुआ तो खुदा ने उनको रूहानी ऐसी कुव्वतें दे दी कि वो जो चीज इंसान नहीं देख पाता था वो देख पाते थे। जवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हुसैन का रास्ता पाकीजगी का रास्ता है। यूसुफ बनना होगा तब हुसैन तक पहुंचोगे। बस यूसुफ की जिंदगी में हमने देखा जवानी का आलम है। मूसा पैदा कहां हुए, फिरौन के घर में। परवरिश कहां हुई, फिरौन के घर में। बहुत बार जवान कहते हैं, मौलाना परवरिश अगर माहौल ना भी मिले लेकिन इंसान की कुव्वत हो, इंसान के अंदर जद्दोजहद हो, कोशिश हो, तो खुदा फिरौन के घर से भी मूसा निकाल देता है। फिरौन के घर से भी मूसा निकल आता है। मूसा आते हैं, मुकाबला करते हैं। सवाल, मूसा महल में रहते थे, कोई कंफर्ट में प्रॉब्लम थी नहीं, जिंदगी आराम से गुजर रही थी, हाँ, उस जमाने की तमाम ऐश और इशरत थी, हाँ, कोई मुश्किल थी नहीं। मूसा क्यों लड़ रहे हो फिरौन से, भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो? यू गेटिंग एवरीथिंग इन लाइफ, मेड एंजॉय योरसेल्फ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? मूसा कहेंगे, मैं सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ हूं, इंसानों में जस्टिस कायम करने के लिए पैदा हुआ। फिरौन मुझे तो आराम से छोड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? इस्तखफ्फ कौम, यानी वो कौमों को कमजोर बना रहा है, मर्दों से उनकी गैरत छीन रहा है और औरतों से उनकी हया को छीन रहा है। आज वही हो रहा है, मर्द बेगैरत हो गए हैं, अपनी बीवी का फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। कोई ये आईफोन 17 खरीदा है जो सबको दिखा रहे हो, प्रोडक्ट है, कमोडिटी है जो दिखा के सबको लाइक्स ले रहे हो। कौम को हल्का बना

देता है फिरौनी निजाम, द सिस्टम ऑफ फिरौन। इस सिस्टम के मुकाबले में मूसा जवानी के आलम से मुकाबला कर रहे हैं। तो जवान यहां बैठ के सोच रहा है, मैं तो जवान हूं, मैं इतने बड़े फिरौन को, आज की दुनिया के बड़े बड़े फिरौन है, मैं इनसे कैसे मुकाबला करूंगा। अगर फिरौन ये सोचते, अगर मूसा ये सोचते तो फिरौन से मुकाबला नहीं कर सकते थे। तवक्कुल इंपॉर्टेंट है फिरौन से मुकाबले में। बस एक चीज फिरौन के सिलसिले में दो चीज बयान करना। फिरौन अपनी जवानी के आलम थे, आलम में थे, मदायन गए। जब फिरौन मदायन पहुंचे तो मदायन में हजरत शोएब की बेटियां उनको मिली, कुरान में है, हजरत शोएब की बेटियां मिली। पानी चाहिए था, मुश्किल थी, जवान थे, हट्टे खट्टे थे, उन्होंने पत्थर हटाया, पानी निकाला, पानी दिया। सो नेचुरल सी बात है कि एक जवान मजबूत हजरत शोएब की बेटियां इंप्रेस भी हो गईं हजरत मूसा से, लेकिन अखलाक के दायरे में। अब हजरत मूसा कह रहे हैं कि ये लड़कियां आगे चल रही हैं, हजरत मूसा पीछे चल रहे हैं। हजरत मूसा को ये रास्ता बता रही हैं हजरत शोएब तक पहुंचने का। हजरत मूसा ने एहसास किया कि अगर ये आगे चलेंगी और मैं इन्हें देखता रहूंगा रास्ते में, तो ये मेरे लिए, नफ्स के लिए खतरनाक है। हजरत मूसा ने कहा रास्ता बदल लेते हैं, एक काम करो, मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे चलो, ताकि मेरी निगाहें तुम पे ना पड़े। कहा जब रास्ता बदलना हो तो आवाज भी ना देना, पत्थर उठाना और पत्थर फेंक देना, जिस तरफ पत्थर मुड़ेगा उस तरफ मैं भी मुड़ जाऊंगा। अपनी जवानी के आलम में अपनी प्योरिटी का मूसा ने इतना ख्याल रखा। या अली, रिजल्ट क्या हुआ, हजरत शोएब ने अपनी बेटी का निकाह करा दिया बाद में। हलाल तरीके से जो मिलेगा वो हलाल भी रहेगा, लज्जत भी रहेगी और बरकत भी रहेगी। हजरत मूसा ने, तो जवानों अगर आपको रोल मॉडल्स चाहिए तो कुरान भरा है रोल मॉडल्स से। ये तमाम नबी जवान थे, हमने आज तक इनको बूढ़ा बना दिया था। जब भी मूसा का कोई फोटो बनाएगा हमेशा बूढ़ा ही बनाएगा। अरे मूसा जवान थे, इब्राहिम जवान थे, अस्हाबे कहफ जवान थे, कुरान में जिक्र है उनका कि वो जवान। बस दीन असासन जवानों के लिए है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों के लिए नहीं है, लेकिन जवानों में एनर्जी होती है, जवानों में तहरीक होती है, जवान मूवमेंट बनाते हैं, जवान कौम को चेंज करते हैं। नबी आए, नबी ने मूवमेंट्स क्रिएट की और सोसाइटीज को चेंज किया, सोसाइटीज जवानों के जरिए से चेंज होती। अब गौर करें, हजरत अली अलैहि सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाल। हजरत अली जंगे बद्र में, सामने 1000 का लश्कर, यहां 313, उनके पास ऊंट हैं, घोड़े हैं, तलवार हैं, नेजे हैं, यहां कुछ नहीं, पाप रहना, बहुत कम तलवारें जंगे बद्र में। मौला अली की उम्र गालिबन 21 साल थी, 21 years old। इस्लाम को मौला अली ने जंगे बद्र ओहद में जितना इस्लाम के लिए लड़े और जितना इस्लाम को बचाया, वो जेन जी का जमाना था उनका। अप्रोक्सीमेटली अंडर 27 years of age मौला अली की अक्सर जंगे ये एज में हुई हैं। तो आप हजरत अली को जब तसव्वुर करते हो कि हजरत अली जंगे बद्र में लड़ रहे थे, कभी सोचते हो कि 21 साल का जवान लड़ रहा था?

और 21 साल वाला जवान कभी ये सोचता है कि मैं अली की तरह जिंदगी जीऊंगा जिस तरीके से अली 21 साल में जिए थे? महया महया मोहम्मदीन वाले मोहम्मदीन, ये है। अब देखें, गौर करें, अली जवान है, बीबी और बीबी भी जवान है, जवानी का आलम है। मौला अली 80 से ज्यादा जंग और गजबों में गए, 8 से 9 साल की जिंदगी है इज्दवाजी जिंदगी, उसमें 80 से ज्यादा गजबे और जंग मिला के मौला अली गए हैं, यानी अक्सर वक्त मदीना में नहीं रहते थे। 4 बच्चे हैं, 4 फर्जंद हैं और 1 शहीद, 5। मैं एक बात बोल रहा हूं, सोचिए कभी इसके बारे में, मसायब में बयान होता है लेकिन आप सोचिएगा। एक बार अली घर पे आते हैं बीबी के पास और बीबी को कहते हैं भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? बीबी कहती है जो थोड़ा बहुत था वो मैंने हसनैन को दे दिया, और 3 दिन से फातिमा जहरा ने कुछ खाया नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, सवाल क्वेश्चन। मौला अली तो इतने टैलेंटेड थे, एडुकेटेड थे, पावरफुल थे, जंगों में लड़ते थे, गनीमतें मिलती थीं, तो क्यों हजरत अली के पास पैसा नहीं था? क्यों नहीं था? कहते हैं अली के पास था बहुत, लेकिन अली से देखा नहीं जाता था कि कोई गरीब रहे। अली गरीबों में, फकरा में, कमजोरों में बांट देते थे अली। अजीजाने गिरामी, गौर करिए, फातिमा जहरा की अजमत को समझिए। अपने आगे से खाना उठा के दे देना और है, और भूखे बच्चों के आगे से खाना उठा के दे देना और है, ये है फातिमा जहरा। रहबरे शहीद तहलील करते हैं, कहते हैं देखो ये जवानी का आलम है दोनों का, ये समझिए, दे आर यंग, दे हैव डिजायर्स। उस जवानी के आलम में जब अली दे रहे हैं, फातिमा ने रोका नहीं, अली मत दो। सवाल किया जाता है ना, कोई जवान अगर दीन का काम करना चाहता है तो घर वाले बोलते हैं तू ही रह गया है, तू ही बस रह गया और कोई नहीं रहा। फातिमा ने कभी नहीं कहा अली तू क्यों, फातिमा ने हमेशा ये कहा कि जब भी दीन को जरूरत है तो मैं क्यों नहीं। अप्रोच ऑफ लाइफ, जवानी के आलम में अली और फातिमा की। आज तलाक क्यों हो रहे हैं? मौलाना अजीम साहब बैठे हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, लेकिन बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। कनात नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, तो रोल मॉडल्स चेंज हो गए। अब रोल मॉडल्स इंस्टाग्राम पे हैं। आइडियल लाइफ कैसी है जो इंस्टाग्राम पे है? बोलते हैं अली और फातिमा मेरे लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं बसर करना चाहते। वो पैशन जो अली और फातिमा में था दीन के लिए, मेरे अंदर वो फायर आई कि नहीं आई? वो जिस तरीके से दीन को जिंदा करना चाहते थे, मेरे अंदर वो फायर आई कि नहीं आई अली और फातिमा से, कि मैंने सिर्फ उनको रखा है दुआओं को कबूल करवाने के लिए? बेशक वो तवस्सुल का दरवाजा है, उनके जरिए से दुआएं मकबूल होती हैं, लेकिन कमाल ये नहीं है, वो तो दुश्मन को भी देते हैं। कमाल ये है कि कुछ ऐसा करो जिंदगी में कि वो कबूल कर ले, ये कमाल है। बस आप देखें, जवानी के आलम में डिसीजन मेकिंग टू सेक्रीफाइस फॉर द कॉज ऑफ गॉड एंड प्रॉफिट एंड रिलीजन,

And my life should have that direction that Ali wanted, that Fatima wanted. And I want to die in that position that Fatima to Zahra says, he lived the life that I wanted him to live. That is the direction of life. जवान है सारे तो जवान अपने आप को कैसे बनाएं? सबसे पहला इरादा है. ये रोल मॉडल्स हैं, इनके रास्ते पे चलना है, उनको रोल मॉडल बनाना है. एक बार एक शख्स आया, गालिबन जाबिर थे. जाबिर से पूछा कि बताओ जिंदगी कैसी है. उस आलम में पूछा पांचवें इमाम ने, जब जाबिर नाबीना हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, भवें इतनी लंबी हो गई थी, जाबिर को कुछ दिखता नहीं था, कमजोरी थी, बुढ़ापा था. जाबिर ने कहा कि बुढ़ापा जवानी से अच्छा है, नाबीनाई बीनाई से अच्छी है. इस हालत में मैं हूं, यानी शुक्र खुदा बताना चाह रहे थे. इमाम ने टोक के कहा, जाबिर जब बीनाई थी तब वो बीनाई अच्छी थी, जब जवानी थी वो जवानी अच्छी थी, क्योंकि जो काम तुम जवानी में कर सकते हो वो तब नहीं कर सकते. जो जवान आज काम कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जवान वॉलंटियरिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मौला कबूल करे इंशाल्लाह, ये जवानी के आलम में जितना एफर्ट लगा सकते हैं उतना नहीं कर सकते. जो वो एज में बॉडी रूह साथ देना चाहती है, बॉडी साथ नहीं देती. अजीजाने गिरामी, बस जवानी बेस्ट टाइम है टू बिकम द लवर ऑफ अली. आज दुनिया में ऐसे जवान है, बहरीन चले जाओ, ईरान चले जाओ, लुबनान चले जाओ, से बाहर निकलते हैं, कहते हैं अपनी मां को कह के निकलते हैं, मां शहादत लेने जा रहा हूं. हमने आज कल गम मनाया, आराम था, मुश्किल नहीं थी, लेकिन लबनान में दाहिया में टूटे घरों के दरमियान उन लोगों ने मुहर्रम मनाया, लेकिन आए हुसैन के लिए. आज हैं ये अजीजाने गिरामी, ये स्टोरी नहीं है. आज की दुनिया में जवान हैं जिन्होंने अली हुसैन फातिमा के रास्ते को अपना रास्ता माना है. एक शहीद का लाशा आया, उस लाशे को दुश्मन ने, वो पहले वाले जब ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए थे, तो चाकू से उसके लाशे के 12 टुकड़े कर दिए थे. उसकी मां ने हरम में, मैंने स्पीच सुनी, उसकी मां ने हरम में आके कहा, मेरे चार बेटे हैं, चारों के चारों अगर खुदा ले लेगा तो मैं हक के लिए ज़ैनब कुबरा के रास्ते पे चलते हुए सबको कुर्बान करने तैयार हूं. ये लोग हैं आज. सो दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी नहीं है करबला. करबला हकीकत है जिसमें आपको और मुझे जीना है. आज है करबला, आज है हक़ व बातिल, आज है हुसैन और यजीद. अजीजाने गिरामी, और इसमें जवान जो है वो सबसे ज्यादा, जवान का रोल इंपॉर्टेंट है. 12 पॉइंट्स हैं जो रहबर मुअज़्ज़म शहीद ने जवानों के लिए कहे, मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं जल्दी जल्दी आपके सामने. एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद. अजीजाने गिरामी, रहबर शहीद ने कहा कि जवानों के अंदर 12 क्वालिटीज होनी चाहिए. अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा, पहला उन्होंने कहा कि जवान का अल्लाह से रिश्ता मजबूत होना चाहिए. देखें, ये जो लोग पूरी दुनिया में तौहीद तौहीद तौहीद कह रहे थे, है ना, इन्हें या अली मदद बोलने से मुश्किल है, लेकिन या अमेरिका मदद बोलने से इनको कोई मुश्किल है.

असली मुश्किल इनकी तौहीद है, ये अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन ये बोलते हैं कैसे हो सकता है, वो इतना ताकतवर है। बस इनके लिए अल्लाह ताकतवर नहीं है, वो ताकतवर है। मुश्किल तौहीद है हमारे और उनमें, आज में मुश्किल तौहीद की मुश्किल है। हमारे यहां अहले बैत की वजह से तौहीद मजबूत है और हमारे जैसी तौहीद किसी के पास नहीं। जो नहजुल बलागा

मुश्किल तौहीद है हमारे और उनमें. आज में मुश्किल तौहीद की मुश्किल है. हमारे यहां अहले बैत की वजह से तौहीद मजबूत है और हमारी जैसी तौहीद किसी के पास नहीं. जो नहजुल बलागा जो सहीफे सज्जादिया से तौहीद लेता है उसके पास वो तौहीद होती है कि दुनिया उसकी पैरवी करेगी. पहली चीज अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें. दूसरी चीज रहबर मुअज्जम कहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर बसीरत को बढ़ाओ. जब वाकयात देखो तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स मजबूत होना चाहिए. जवानों को कह रहे हैं ताकि दुश्मन धोखा ना दे सके. बसीरत अपनी बढ़ाएं. तीसरी चीज कहते हैं कि अपनी जिंदगी में एम रखें, गोल रखें, एनर्जी रखें. आज दुश्मन चाहता है कि एक जवान की जिंदगी. व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ. कोई गोल है? मुझे बताएं कि वो जानवर जो बाहर घूम रहा है वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं लाइफ को? उसको सुबह जॉब पे भी नहीं जाना है, सैलरी भी नहीं भरना है, रेंट भी नहीं भरना है, सैलरी भी नहीं आनी है, हया भी नहीं है, है ना? इंसान तो गुनाह करना चाहता है, 100 बार सोचता है, वो तो जानवर को सोचना भी नहीं है. जिंदगी में एम होना चाहिए, एस्पिरेशन होना चाहिए. कद्र रजुल अल कद्र हिम्मत ही. इंसान की वैल्यू उसकी हिम्मत के मुताबिक है, उसके गोल्स के मुताबिक है. तो दुश्मन चाहता है जवान की जिंदगी बहुत छोटी हो जाए, उसके वैल्यूज और उसके गोल्स और एस्पिरेशंस छोटे हों. रहबर कहते नहीं, अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को बढ़ाओ. फिर कहते हैं एक दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो आइडियलिज्म और सुपरफिशियल गोल्स को हटा के रियल गोल्स की तरफ जाओ. सोशल मीडिया की वजह से एक आइडियल जिंदगी और सुपरफिशियल लाइफस्टाइल, कहते हैं इसको अवॉइड करो. फिर कहते हैं कि अपने अंदर इनकलाबी जज्बे को बाकी रखो. कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपके बारे में पूछे ये कौन सी कौम है तो कहेंगे कि यार ये जालिमों के सामने कुछ बोलते नहीं है, डरपोक कौम है. अपने अंदर इनकलाबी स्पिरिट को बाकी रखो. रहबर जवानों को कह रहे हैं. फिर रहबर कहते हैं जवानों को अपने लिए मॉरल सेल्फ बिल्डिंग का प्लान बनाएं. आपके पास अच्छे उलमा मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं जाता हूं दूसरी जगह, देखता हूं एक मौलाना दूसरे मौलाना की टांग काट रहा होता है. सही बोल रहा हूं? मौलाना लोग बोल रहे ऐसी बात नहीं करना चाहिए आपको. यहां पर उलमा के अंदर इत्तेहाद है, अच्छे उलमा हैं, मुखलिस हैं. अजीजाने गिरामी, अगर आलिम मौजूद हो और उससे उससे इल्म ना लिया जाए, इससे ज्यादा आलिम पे कोई जुल्म नहीं हो सकता. अपने लिए सेल्फ बिल्डिंग और मॉरल ग्रोथ के लिए प्लान बनाए, टीचर रखें, गुफ्तगू करें, खुसूसन जवान. अपने लिए प्लान बनाएं. फिर कहा कि अपनी जिंदगी में दुश्मन चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम जिंदगी में उम्मीद रखो और अल्लाह की जात पर भरोसा रखो. मायूसी हमारे दीन में नहीं है. फिर कहा अपनी जिंदगी में, लास्ट पॉइंट कह रहा हूं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेके आओ. हम लोगों के यहां वो जो चला आता है वही चला आता है, कोई इनोवेशन कोई क्रिएटिविटी नहीं होती. हर चीज में इंसान को इंसान इनोवेट करना चाहिए, उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए. इंसान है वो जो ग्रोथ करता है, वगरना 500 साल पहले गाय वही राउंड मारती थी, अभी भी वही राउंड मार रही है. इंसान इंसान है क्योंकि उसको खुदा ने अक्ल दिया. अक्ल का मतलब यह है कि इंसान इर्तका पैदा करे, इंसान के अंदर ग्रोथ हो.
बस एक आइडियल जवान वो है जो दीनदार हो, कामयाब हो, जिसके अंदर स्पिरिट हो।

हो, जिसके अंदर इनोवेशन हो, जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, जो दुनिया में भी कामयाब होना चाहता है और अपनी कामयाबी को वक्त के इमाम के लिए खिदमत में खर्च करना चाहता है। अजीजाने गिरामी, बस आखिरी बात कह रहा हूं फिर रब्त मसायब, कि गौर करिए कि आज दुश्मन ने एक ट्रायंगल बनाया है। गौर करिएगा, आखिरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिवायत हमारे वहां है कि इस रिवायत में कहा गया है कि आखिरी जमाना जो हमारे यहां होगा उसमें शबाहत होगी मूसा और फिरौन के जमाने की, और मूसा और फिरौन के जमाने में जो जालिम है और जुल्म का निजाम था उसके तीन पॉइंट्स थे ट्रायंगल के। एक फिरौन, फिरौन या फिरौनियत उस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है जो जुल्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। आप गौर करें, कुरान में है कि जब मूसा ने ऐसा फेंका और वो सब सांप को खा गए वो, तो तमाम जो जादूगर थे उनमें से कई जादूगर ने कहा कि हम अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा ना रब्बो को मुलाला, मैं बड़ा रब हूं, तेरी हिम्मत तू मुझसे पूछे बगैर ईमान ले आया। यानी फिरौनियत उस सिस्टम का नाम है जो आपको कंप्लीट डिजायर्स के आपके ऊपर कंट्रोल चाहता है, यानी व्हाट एवर यू चूज आई शुड चूज फॉर यू। आज मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आपके साथ यही कर रही है, आप बेफिक्र रहे। यू थिंक आई चूज बट दे चूज फॉर यू, यू थिंक आई हैव अ चॉइस बट ऑल द चॉइसेस आर गिवन बाय देम। कंप्लीट कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनलाइज करना। पता चला बच्चा पैदा होने वाला है मुझे मारेगा, सबके बच्चों को मार दो, कत्ल कर दो, सब जो बच्चा पैदा हुआ उसका लाओ उसका गला काट दो। जुल्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। आज जो आप सुन रहे हैं व्हाइट हाउस से वो वही बातें हैं, यानी जुल्म करने के ऊपर शर्म नहीं है, इफ्तिखार है। ये निजाम है जुल्म है। पहला फिरौनियत, अभी वक्त नहीं उसको, इंशाल्लाह में बुजुर्ग उलमा मौजूद है मुझसे बेहतर आपको समझाएंगे। पहला फिरौनियत है, यानी जुल्म इंस्टीट्यूशनलाइज तब होता है जब उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी पैदा होती है। यानी जुल्म है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी भी है जुल्म को करने के लिए। सेकंड कारून, कारून कौन है? कारून वो है जो उस जमाने का फाइनेंस जिसके पास बहुत था, और उलमा कहते हैं हर जमाने में फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सोसाइटी में जुल्म को फ्लरिश करवाता है। अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, एक पूरा सिस्टम है। गरीब बेचारा 12 घंटा मेहनत कर रहा है, पसीना उसका बह रहा है, सर का पसीना पैर तक आ गया, इतना पैसा उस गरीब को नहीं मिलता कि वो अपने घर वालों को इज्जत की जिंदगी दे सके। ये जुल्म है, याद ले, निजाम है पूरा जुल्म का। और इस निजाम के अंदर 85 या 90% इंसान मुश्किल में रहेंगे, 10% सिर्फ पूरी दुनिया का माल खाएंगे। और आप स्लोगन दे दो डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, शेयर्स, फला फला फला, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जुल्म। ये फिरौन के निजाम में कारून का रोल प्ले करता है। कुरान मजीद में है कि कारून जब उसका माल जाता था तो कुरान मजीद में है कि 40 लोग जो हैं वो सिर्फ उसकी चाबियां उठाते थे, इतना वेल्थ थी उसके पास। मिन कौम, इन मूसा के कौम में से भी था।
मैं क्यों कह रहा हूं, जवानों के लिए कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि तुम अगर मेहंदी चाहते हो तो मेहंदी

इसी निजाम को पलटेगा। तीसरा सामरी, सामरी कौन है अजीजा ने गिरामी? ये कौम, वो कौम है, गौर करिएगा क्योंकि आखिरी जमाना है और शबाहत भी होगी। ये कौम वो कौम है कि अल्लाह ने इनके लिए आसमान से मन्ना और सलवा भेजा था, खाना भेजा था अल्लाह ने। तो जब इनको भूख लगती थी, हम तो ऐप पे क्लिक करते हैं ना, वो तो ऐसे हाथ ऊपर करते थे, मन्ना सलवा आता था, तोड़ते थे, खा लेते थे, टेस्टी। लेकिन थोड़े दिन के बाद बोर हो गए। कुरान में है, अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह इसके साथ प्याज भी भेज, जिंजर भी भेज, ये भी भेज। अभी मैं एक जवानों से एक सवाल कर दूं, अगर आपको अल्लाह इतना मोजिजा दिखाता कि आपको भूख लगे और अल्लाह आपको ऐसे हाथ तोड़ के आप खाना खा सकते थे, हाथ से उतार के, तो आपका ईमान कितना मजबूत होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था कि नहीं? यही लोग, मूसा ने कहा चलो लड़ने के लिए, तो मूसा को बोलते मूसा एक काम कर, तू जा और तेरे खुदा को ले जा, तुम लोग लड़ो, जब तुम लोग जीत जाओगे तो हमको बुला लेना। यही कौम जिसने मोजिजे देखी और नबी के हाथों के नीचे नबी ने उनकी तरबियत करना चाहा साल हा साल, लेकिन नबी 40 दिन के लिए गए, ये गैबत की तरफ इशारा है कि नबी 40 दिन के लिए गए, मूसा गए हारून को बना के गए, गैबत में तुम्हें बता के जा रहे हैं, इमाम गैबत में जाएंगे, नायब मौजूद होगा। जब पलट के आए मूसा, तो मूसा कुरान में एक जगह सिर्फ दाढ़ी का जिक्र है, कब है? आरिफ साहब मुस्कुरा रहे हैं, जब मूसा आए और मूसा ने आके हारून की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ के कहा हारून क्या किया तूने, मेरे अल्फाज हैं। तो हारून ने कहा मैंने हिदायत की, ये कौम ऐसी है, अरबाब यानी ये वो कौम है जिसने मोजिजे देखी, लेकिन एक सामरी आया और उसने उस कौम के वैल्यू सिस्टम को बदल दिया। क्या अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, माल को डबल करना चाहते हो, अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो, अब तो मूसा है नहीं, देखो मैंने ये गाय बनाई है, गाय की पूजा करो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। वो कौम जो कल नबी के साथ थी, नबी के साथ मोजिजे देख चुकी थी, उस कौम में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वहां हक बातिल पर आ गया, बातिल हक पर आ गया, ये सामरी का रोल है। वला तलबसून हक बिल बातिल, खुदा कुरान में कहता है कि हक को बातिल से छुपाने की कोशिश ना करो, जबकि तुम जानते हो कि हक क्या है। क्या हुआ, पलट गए। सामरी यानी मीडिया, तीन पॉइंट्स हैं जुल्म के, मेन तीन पॉइंट्स हैं। फिरौन उस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, कारून उस फाइनेंशियल सिस्टम का नाम है, और सामरी उनके मीडिया का नाम है। ये तीनों मिलके पूरी दुनिया में जुल्म बरपा करते हैं। फिरौन जुल्म करेगा और सामरी आके उसी के जुल्म को उसकी तारीफ बना के बताएगा। कुरान में पूछा कि क्यों जुल्म करते हो, कहा हम कहां जुल्म करते हैं, हम तो इस्लाह करना चाहते हैं, वी ब्रिंग डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड, वी ब्रिंग रेवोल्यूशन फॉर वुमेन्स राइट्स।

अजीजा ने गिरामी, बस मुझे जवान को क्या करना है, मुझे पहले समझना है दुनिया क्या है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, और मेरी तमन्ना ये होनी चाहिए कि ये दुनिया में जुल्म का निजाम पलटे और मेहदी, इमाम मेहदी का निजाम आए। आज नहीं आएगा, हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल, डजंट मैटर, बट माय विजन शुड बी वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट आई वांट। आई डोंट हेट इट, व्हाई वुड आई वांट टू रिप्लेस इट। दे गिविंग मी सो मच कंफर्ट मौलाना, आई शुड हैव हेट इट। वही लोग हैं जो मुआविया के ज़माने में अगर शाम में होते और अली कूफा में मर रहे होते तो कहते अली है वहाँ पर कूफा में, मुझे क्या करना। निज़ाम हक और निज़ाम बातिल अरबाब अज़ा, बस जवान अपने आप को तैयार करे। मीडिया में अगर सामरी वो कर सकता है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर ईरान के जवान चंद तुमान में $20 खर्च करके लेगो की ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और वो जंग लड़के जीत भी सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन बड़े बड़े मीडिया पर्सनालिटीज कह रहे हैं कि ईरान के जवानों ने अमेरिका को मीडिया के वॉर में हराया है। मेरा सवाल ये है कि मैंने कितना तैयारी की है मीडिया के वॉर को जीतने के लिए। तंजानिया में क्या होना चाहिए, क्या नरेटिव होना चाहिए, स्वाहिली में क्या होना चाहिए, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है, बस विजन, जवानों के अंदर इरादा होना चाहिए, विजन होना चाहिए। आप जवान हैं जो इस कौम की तकदीर बदलेंगे, पूरी उम्मीद हमारी जवानों से है। बुजुर्ग नाराज ना हो, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब ला चुके हैं, अब जवानों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है इंशाल्लाह। बस अजीजाने गिरामी, खुदा हमें तौफीक दे कि ये करबला से हम अपने तसलसुल को जोड़ सकें। अजीजाने गिरामी, जो लोग, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ, मेरे साथ खुद हुआ इस जिंदगी में तो आपको समझ में आया। मैं एक बार करबला गया था आशूर में ज़ियारत के लिए, और आशूर से मैं आगे बढ़ के काजमैन में गया था ज़ियारत के लिए। काजमैन में एक उस्ताद के साथ मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा हर हरम की एक ख़ास खुशबू होती है, आपको वही खुशबू आ रही होगी। कहा नहीं, कोई ख़ास खुशबू है। मैंने थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि एक लाशा आ रहा है। उस टाइम पे दाएश की जंग चल रही थी, सामर्रा पे हमला हो रहा था, एक जनाजा आ रहा है। मैंने आगे जाके पूछा कौन है ये, कहा कि ये वो शहीद है जिसकी तमन्ना थी कि मुझे रोज़े आशूर शहादत नसीब हो भूख और प्यास के आलम में। जिस जमाने में हम जिंदा हैं, कुछ लोग हुसैन से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी, आज जवान ऐसे हैं जो अपने आप को इस राह पे, बिल्कुल उनके लिए जर्रा बराबर शक नहीं है इस राह पे, हक की राह पे कुर्बानी देने में। बस अजीजाने गिरामी, 12 मुहर्रम आ गई, 12 मुहर्रम जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो शहादत के बाद अरबाब अज़ा, जब बच्चों को पानी ला के दिया गया, सबसे पहले पानी लाया तो ज़ैनब कुबरा ने सकीना को पानी दिया, कहा कि बीबी

आप पी लीजिए, कहानी आप बड़ी हैं आप पीजिए। कहा नहीं बेटा तुम छोटी हो, तुम पहले पी लो। सकीना पानी का कूजा लिए जले हुए झूले की तरफ आ गई। मेरे भैया अली असगर तुम तो बहुत प्यासे थे। अरबाब ऐसा बस दिन गुजरा, उलमा

मुझे नहीं पता ज़ैनब ने उस रात कैसे गुजारी होगी, कभी बच्चों को जमा कर रही है, बच्चों को कभी आगोश में ले रही है। हार बाबे अजा, ग्यारहवीं मुहर्रम आ गई, ग्यारहवीं मुहर्रम को ये मनहूस ये मलून अपने लाशों को लेके दफना रहे हैं, लेकिन हाय मैदान करबला बेगोरो कफन लाशे पड़े हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। आर बाबे अजा, बारह ग्यारह मुहर्रम को अहले गरम को मैदान करबला से गुजारा गया। रावी कहता है तमाम बीबियों ने खुद को जमीन करबला पे गिरा दिया, हर बीबी अपने महरम के पास, लेकिन ओनो मोहम्मद के लाशे पे कोई ना था। ज़ैनब भैया के लाशे से लिपटी है, भैया आर बाबे ऐसा वक्त गुजरा, बारह मुहर्रम आ गई, बनी असद का काफिला आया। बनी असद के काफिले ने चाहा कि जैसा वादा किया था इन्हें दफन कर दें, लेकिन एक सवाल था कि बनी असद के लोग कैसे पहचाने किसका लाशा है, क्योंकि जब वो आए तो ना कोई कफन था, बरहना लाशे। अरबाबे अजा, इतने में देखा एक कड़ियल जवा चलता हुआ आ रहा है। हाय सैयद सज्जाद आए, सैयद सज्जाद ने अपने हाथों से दफन किया। अजब नहीं अब्बास के बाजू उठाए होंगे,